0: Radio 2000 98.5 FM Community Program
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM
0: Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार विचार संगीत और सामाजिक सूचनाएं
0: रेडियो 2098.5 एफएम मल्टीकल्चरल रेडियो
2: आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी 5 जुलाई 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। मध्यम वर्ग भारत की वृद्धि का इंजन। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 500 शहर बनेंगे एक नए आर्थिक केंद्र। केतन हत्याकांड कोडवर्ड्स निकनेम और इमोजी के जरिए रची गई साजिश सिया की सीक्रेट चैट्स डिकोड करेगी पुलिस। शांति समृद्धि और स्थिरता भारत जापान शिखर सम्मेलन हुआ सफल हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी मजबूत। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन के रिकॉर्ड्स गोपनीय रखना सही है केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय के फैसले को सही ठहराया। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार होने वाला है खत्म मैनचेस्टर में मिलेगा मौका क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा। अब सुनिए समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मध्यम वर्ग को भारत की वृद्धि का इंजन बताया। फ्रांस के प्रमुख आर्थिक मंच रेन कॉर्टिस इकोनॉमिक्स DXN प्रोविंस में एक पैनल चर्चा के दौरान सीतारमण ने कहा कि लगभग 500 शहर देश के अगले आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं। आज भारत की संख्या का 31% मध्यम वर्ग है। महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले से धक्का देकर हत्या के मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी सिया गोयल की मोबाइल चैट्स को डिकोड करने में जुटी है। इन चैट्स में कोडवर्ड्स निकनेम और इमोजी का इस्तेमाल किया गया है जिनका मतलब केवल सिया ही बता सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत जापान साझेदारी हिंद प्रशांत और उससे आगे शांति समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार है। मंत्रालय ने यहां आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को बेहद सफल बताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने के लिए सरकार से स्वीकृत योजना और उससे जुड़े आदेश को एक गोपनीय फाइल में रखा था। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2024 के एक आदेश में RTI एक्ट के तहत इन रिकॉर्ड्स को नहीं देने के फैसले को सही ठहराया था। पूरा क्रिकेट जगत एक टकटकी लगाए वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रहा है। आयरलैंड के खिलाफ उनको मौका नहीं मिला था और न ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में, लेकिन आज मैनचेस्टर में खेले जाने वाले T20 में वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार खत्म हो सकता है। इस बात का संकेत वैभव सूर्यवंशी ने खुद दिया है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की मांग लगातार उठ रही है। संजू सैमसन के फेल होने के बाद तो इसने और तूल पकड़ा है। हालांकि विश्व क्रिकेट में इस बात को लेकर दो भागों में बांटा हुआ है। एक धड़े का मानना है कि वैभव को डेब्यू का मौका मिलना चाहिए, तो वहीं एक बड़ा धड़ा मानता है कि अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,34,650 रुपये प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 95.23 रुपये और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66.09 रुपये। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
3: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 एफएम 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का हाईलाइट है फेस टू फेस इंटरव्यू विद बॉलीवुड एक्टर मिस्टर प्रकाश बेलवाड़ी। गपशप विथ आई ए स्पेशल कॉन्वर्सेशन विथ प्रोफेसर कोपल सिन्हा। मुमताज के सदाबहार गीत भी आप सुनेंगे। इससे पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करें, ऋचा जी से आज का विचार।
4: नमस्कार श्रोताओं, आज का विचार है कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है।

दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी

0: g.au. धन्यवाद।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर।
2: श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने बताया कि दर्पण स्टूडियो के लिए आज बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है कि आज जो है वो हमारे स्टूडियो में बॉलीवुड एक्टर पधार रहे हैं, और बहुत ही भाग्य की बात है कि वो यहाँ पे हैं उपस्थित। और मेरे ख्याल से दर्पण स्टूडियो के लिए ऐतिहासिक बात है कि श्री प्रकाश बेवाड़ी जी आज साक्षात पधारे हैं हमारे स्टूडियो में। तो उनको सेटल होने देते हैं, फिर आपसे उनका परिचय कराते हैं। तो आइए, आज मुमताज के गीतों की सदाबहार गीतों की लड़ी लगेगी, तो सुनते हैं मुमताज का ही एक गीत।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
2: नमस्कार सिडनी, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज पहली बार दर्पण हिंदी रेडियो के स्टूडियो में कदम रखा है बॉलीवुड और भारतीय रंगमंच की एक ऐसी शख्सियत जिनका हर किरदार अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। जब अभिनय की बात हो, जब रंगमंच की बात हो, तब सिनेमा की बात हो, तो एक ही नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, वो है प्रकाश बेलावाड़ी। जी हाँ, प्रकाश जी एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अभिनेता, निर्देशक, लेखक, पत्रकार, रंगकर्मी और शिक्षक के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। मद्रास कैफे, एयरलिफ्ट, वजीर, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, पठान और अनेक चर्चित फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीता है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म स्टंबल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और रंगमंच की दुनिया में उनका योगदान प्रेरणादायक माना जाता है। आज हम जानेंगे उनके जीवन का वह सफ़र जो कैमरे की रोशनी से कहीं आगे है, उनका बचपन, संघर्ष, थिएटर, सिनेमा, विचार, अनुभव और ज़िंदगी को देखने का उनका अनोखा नज़रिया। तो दर्शकों, श्रोताओं, तैयार हो जाइए एक यादगार मुलाकात के लिए और आइए स्वागत करते हैं मिलके अभिनेता, निर्देशक, लेखक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्री प्रकाश बेलावाड़ी जी का। नमस्कार प्रकाश जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते रिचा जी, गुड मॉर्निंग लिसनर्स ऑफ दर्पण इन सिडनी। मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं दक्षिण भारत से हूँ, मैं थोड़ा तो रुक के हिंदी में बोल सकता हूँ, इसलिए नो यू शुड फॉरगिव मी इफ आई स्पीक इन इंग्लिश।
2: नहीं, बिल्कुल पूरी इजाज़त है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों, हमारे श्रोतागण दोनों भाषा जो है समझते हैं। तो स्वागत करते हुए हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप भारत में कहाँ से हैं, जैसे आपने बताया साउथ से हैं, तो साउथ में कहाँ से, और कुछ अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
3: आई वॉज बॉर्न इन बेंगलोर इन विक्टोरिया हॉस्पिटल इन 1961. I came from a lower middle class family, and what united us and my entire early experience of life has been theater. Actually, the house that I grew up in was called Green Room.
2: Because Green Room? ये तो बड़ा interesting नाम है।
3: इसलिए, because my father met my mother when he went to do makeup. They were both amateur artists, and my mother was in intermediate school, and she had to do a male role. And my father, who was working in Kirloskar factory that time, he went to do makeup, and he drew a mustache, and she didn't like it. She said, "I want crepe hair, proper." And because, you know, he was young, she was young, and, you know, he teased her and said, you know, for some people it'll start growing, you know. agar lagta hu main, to, you know, that problem will be there.
2: Yeah.
3: She said, you know, it doesn't matter, you know, because, you know, I never want to marry. So he kind of fell in love with her.
2: Love with that dialogue.
3: after about 4 or 5 years, you know, she had graduated, and, you know, he finally married her. So the house was near, is even now that house is there in Bangalore. It's called Green Room. My brother's family lives there.
2: Arewa.
3: Yeah, so.
2: तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आपने कन्नड़, हिंदी और अंग्रेज़ी के माध्यमों में काम किया है, इन तीनों के अनुभव में क्या अंतर है, कि आप किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, हिंदी, अंग्रेज़ी और कन्नड़?
3: I don't know, see, cinema is a visual language, you know, and the other language, spoken language is nominal, but you know, I have acted in Malayalam, Tamil, Telugu, I've done a Marathi film as well, you know, so I've done lots of languages, but you know, my language is my mother tongue, Kannada, that is of course my favorite language, but I've really enjoyed acting in films in other languages too, particularly in Hindi, Malayalam and Telugu. Also one film in Tamil, I've really enjoyed doing one or two films in Tamil, yeah.
2: बहुत अच्छी बात है, बताइए मतलब कितने लैंग्वेजेस आप जानते होंगे और कितने कलाकारों के साथ आपने काम किया होगा। मुझे तो यही देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो है आप बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करके भी आप इतने हम्बल हो। लोगों का तो एकदम सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई हम तो फ़ोटो खिंचा लिए शाहरुख खान के साथ। तो आपने तो बहुत कुछ काम किया, जैसे मद्रास कैफ़े, एयर लिफ्ट और कई पिक्चरों में आपने, आपके पसंदीदा एक्टर कौन से हैं, इतने लोगों के साथ आपने काम किया?
3: मोहनलाल आई थिंक इज इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्टर।
2: अच्छा,
3: मनोज वाजपेयी इज वेरी गुड एक्टर।
2: अच्छा,
3: देयर आर मेनी, आई कांट नेम, बट यू नो माय फर्स्ट नेम्स आई कैन थिंक ऑफ आर मोहनलाल एंड मम्मूटी एंड वेरी गुड एक्टर।
2: और अक्षय कुमार के साथ काम करके कैसा लगा?
3: अक्षय कुमार जी इज अ टेरिफिक पर्सन, ही इज अ वेरी, let me say he is a very charming person and very generous and very kind to his co-artists, you
2: know. Yeah. क्योंकि आपका तो एयरलिफ्ट जब हमने देखी तो आप ऑलमोस्ट पूरी मूवी में ही उनके साथ हैं, अक्षय कुमार के साथ।
3: हाँ, I'm the most irritating character.
2: Yeah, बिल्कुल।
3: No, but you know what you said, that I'm humble, you said. See, you know, when teachers in school, in primary school, in high school, colleges, when doctors who work in rural places, in villages, there are so many people in India who do so much, you know, for the country. Then nobody knows their names, they go unmentioned. Just because our faces are seen constantly on television or on screens, we become famous, but that is not really fame, that is not fame. When they are humble, how can we be, you know, arrogant, you know?
2: बिल्कुल। तो लोग कहते हैं अक्षय कुमार बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, एकदम सुबह आ जाते हैं 4 बजे।
3: नो बैड।
2: आप लोग को भी जाना पड़ता था इतने सुबह?
3: वेरी वेरी, यू नो, ही व्हेन वी वर शूटिंग इन द मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया फॉर एयरलिफ्ट, बिकॉज ही कुडंट गेट ए जिम, आई हर्ड ही वॉज रनिंग अप 40 floors, you know, for exercise, because he's a fitness, you know, enthusiast, and nobody can smoke in the set, you know, when he's there. I've done 2 films with him. I've done another film, two films. I've done Airlift and Sarfira with him.
2: अच्छा, Sarfira भी आपने किया? अच्छा.
3: Yeah, he's. I really love him, you know, he's a very good guy to be with.
2: तो कैसे आपका झुकाव हुआ बॉलीवुड फिल्म में, क्योंकि आप तो साउथ से हैं, दक्षिण से, और कैसे हिंदी फिल्मों में आपकी एंट्री हुई?
3: पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आई एम अ बैकस्टेज पर्सन,
2: जी,
3: यू नो, बिकॉज़ यू नो आई यूज्ड टू डू लाइटिंग एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर डायरेक्शन,
2: जी,
3: एंड I wrote and directed a television series, and which got abruptly stopped. And I had actually started a company along with some friends, and we had 22 employees.
2: जी.
3: We didn't know what to do, so I decided to make a film.
2: अच्छा.
3: And I.
2: What age, if I can ask?
3: I was a journalist for many years.
2: अच्छा.
3: So I worked in Delhi as, you know, chief of news service for Asian Age. And I had some disagreement with my editor on some political matter, and I resigned. I think he was also happy that I resigned. And anyway, I came to Bangalore. I was close to 40 years that time. I was 39, and I started a company. and I did this television series. It got some name where it became a kind of cult film, cult TV
2: Kya
3: series.
2: Naam?
3: Garva.
2: Garva. Garva, it's Hindi called. Mein thi wo?
3: No, no, it was in Kannada, but there are a lot of Sanskrit words in Kannada.
2: Ji, Kannada mein hai. Haan.
3: So,
2: Ji.
3: We called it Garva, and it got abruptly stopped, and the staff was there, so we decided we'd make a film. So, first time editor, first time direction for a film, first time script writing for a film,
2: Ji.
3: First time, assistant direction, first time camera for film. Everybody was first
2: Ji.
3: New.
2: Ji.
3: And we made the film. That film won the National Award for Best Film in English. And
2: Kamal ki baat hai.
3: Yes, and it became kind of text film in those days. I'm saying 2002, 2003 in the US, in some universities, Ji. That film was shown because it is I'll claim it is the first film ever made on dot com bust and how the stock market was manipulated.
2: बहुत अच्छी बात. नहीं, चलिए, आपकी वार्ता श्रोताओं हम लोग की जारी रहेगी. और आपको बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर कोपल सिन्हा भी जुड़ी हुई हैं. उनसे भी बातचीत करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है. और जब अक्षय कुमार की और एयरलिफ्ट की बात हुई है तो क्यों ना एक गीत उसका सुन लिया जाए. कहीं भी मत जाइएगा, रेडियो से जुड़े रहिए. धन्यवाद.

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
3: श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं प्रोफेसर कोपल सिन्हा जी भी, जो मैक्वेरी विश्वविद्यालय सिडनी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और हेल्थ इकोनॉमिक्स की प्रतिष्ठित शोधकर्ता हैं। अपने वर्षों के शोध और जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर इन्होंने गपशप विद आई की शुरुआत की है, एक ऐसा मंच जहां भारतीय मूल की युवा महिलाओं को मार्गदर्शन, अपनापन और जीवन के महत्वपूर्ण सवालों पर खुलकर बात करने का अवसर मिलता है। प्रोफेसर कोपल सिन्हा जी, दर्पण हिंदी रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद ऋचा जी,
3: आपको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले अपने बारे में संक्षेप में बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं, सिडनी कब आना हुआ, वगैरह वगैरह।
4: धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद सुनील जी, इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। मैं ऑस्ट्रेलिया 2002 में आई थी PhD करने के लिए, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में
3: जी।
4: और वहाँ पे मैंने 3 साल PhD कंप्लीट करा
3: जी।
4: उसके बाद 10 साल हम लोग मोनाश मेलबर्न में थे, वहाँ पे हेल्थ इकोनॉमिक्स की पोजीशन पे मैंने रिसर्च किया। और उसके बाद 2017 में मैंने मैक्वेरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यहाँ पे भी मैं हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, रिसर्च करती हूँ। और मेरा मोस्टली जो रिसर्च एरिया है वो ये है, बहुत लोग पूछते हैं हेल्थ और इकोनॉमिक्स का क्या यू नो अलाइनमेंट है, बट कोविड के बाद वो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट आपकी हेल्थ इज वेरी वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इनकम, आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और अगर हेल्थ खराब होती है तो इट्स काइंड ऑफ ब्रिंग्स यू इन दैट ट्रैप वेयर पुअर हेल्थ एंड पुअर वेल बीइंग
3: जी।
4: And that's what my research also says. So,
3: तो ये बताइए कि आपके शोध और जीवन के अनुभवों ने आपको गपशप विद आई शुरू करने की प्रेरणा दी, तो ये ख्याल कहाँ से आया और कब इसकी शुरुआत हुई?
4: आई थिंक ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ से एक जो बिल्डिंग ऑन होती है सिचुएशन की
3: जी।
4: आज हम लोग जो बात कर रहे हैं इश्यूज़ पे, सुगंधा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द कल्चरल डाइवर्सिटी अक्रॉस बॉलीवुड एंड दी फिल्म वर्ल्ड इन इंडिया, और प्रकाश जी ने बड़े अच्छे से बताया। आई थिंक उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में या माइग्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें
3: जी,
4: तो पहले हम तो फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने आए और हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकग्राउंड है
3: जी,
4: विच विल सी अस थ्रू आर लाइव्स
3: जी।
4: और द इशू दैट बच्चे जो फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे या जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं और फिर और बढ़ रहे हैं
3: जी,
4: वेयर डू वी बिलोंग
3: जी,
4: हम ऑस्ट्रेलियन हैं, हम इंडियन हैं। और एक क्वेश्चन जो आता है, आप अगर कम्युनिकेट करेंगे कि प्रोफेशनली जब आप बात करते हैं, वेयर आर यू एक्चुअली फ्रॉम, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग भी पूछते हैं, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हम हैं तो ऑस्ट्रेलियन, बट देन व्हाई इज़ दैट क्वेश्चन कमिंग टू अस, आई मीन यू नो सो। और ये छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जिसके अंदर कि हम हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, उनको लेके हम चलें। और हमने स्टार्ट किया है ये विद आई, एवरीबडी नोज आई,
3: तो ये नाम क्यों गपशप विद आई?
4: बिकॉज़ हमारी आई जो है ना
3: जी
4: वो उन्होंने यहाँ पे अर्ली 1970s में द फर्स्ट हिंदू टेम्पल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हर एंड अदर पीपल, एंड शी इज बीन सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द इंडियन कम्युनिटी हियर।
3: और आप बात कर रही हैं मिसेज लीला गुने जी से?
4: मैं बात कर रही हूँ मिसेज लीला गुने जी से, और उनके साथ हमने ये स्टार्ट किया है। उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग फॉर 40 years एंड ऑफ बिल्डिंग अ फैमिली हियर, अ कम्युनिटी हियर।
3: दर्पण के लिए भी नाम नया नहीं है, आई जो है वो कई बार दर्पण स्टूडियो में आ चुकी हैं,
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और सभी उनसे परिचित हैं।
4: एग्जैक्टली, तो हमने स्टार्ट उसके लिए उनके साथ किया है। और हमने बच्चों जो 18 to 25 years old girls हैं उनके लिए initially start किया है, but we intend to expand it to boys and to other people in the community, जो आई जैसा experience है, जिन लोग ने यहाँ पर काफ़ी time spend किया है, the kind of things जो हम लोग उनको support करना चाहते हैं, are around, well, am I Australian enough?
3: जी.
4: Am I Indian enough? हमारी family expectations अलग होती हैं. हम जी. एक अलग family values देना चाहते हैं. बच्चे school से एक अलग value लेते हैं.
3: जी.
4: अगर वो Christian school में जा रहे हैं या किसी और उसमें जा रहे हैं, religious activities में जा रहे हैं, तो उनका एक it's like a melting pot, very similar to the Bollywood story we're talking about, which is कि Bollywood की कोई identity as such नहीं है,
3: जी.
4: जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे. तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी हमारे बच्चों की आइडेंटिटी नहीं है, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज के इट्स अ वेरी नाइस मेल्टिंग पॉट फॉर ऑल दीज डिफरेंट कल्चर्स एंड वॉट दे ब्रिंग आउट इज गोइंग टू बी नॉवल टू अस एज वेल, राइट, अस एज पेरेंट्स एंड एज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी.
3: तो जो यंग गर्ल्स हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनकी क्या है, आपको क्या लगता है? और मैं भी, सुगंधा भी इस बारे में कुछ पूछ सकती हूँ और बता सकती हूँ, क्योंकि हमारी यंग ब्रॉडकास्टर हैं, तो आप भी कोई सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन कोमल जी, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी चुनौती है?
4: आई थिंक सबसे बड़ी चुनौती है नेविगेटिंग द करियर विद द हम्बल अपब्रिंगिंग दैट हिंदुइज्म एंड हमारे जो इंडियन कम्युनिटी में हमारे जो आता है. Kids try to balance that, the two cultures, the balancing of the two cultures is the biggest challenge, मुझे ऐसा लगता है.
3: और ये कभी कभी confusing भी हो जाता है,
4: बहुत confusing हो जाता है. जैसे हम बच्चों से एक अलग level of expectation रखते हैं जब हम seniors से बात कर रहे हैं, but when you go out in the Australian community, it's a very different, आप वैसे ही ले लीजिए, हम uncle auntie कहते हैं हमारे seniors को, और it's on a first name basis अगर आप जाते हैं in the community. So while for us it's okay कि भाई at home you have to you have to kind of nurture the culture, but for the kids it's a big challenge. Okay, where do they draw the line?
3: मैं प्रकाश जी से भी पूछना चाहूंगी कि जो बॉलीवुड में आपको या फिल्म जगत में आपको ये कल्चर कैसे दिखता है कि यंग गर्ल्स जो हैं, क्या वो किसी समस्याओं का सामना करती हैं, चाहे वो रंगमंच हो चाहे वो हिंदी सिनेमा हो?
5: आई थिंक इन अ प्लेस लाइक बॉलीवुड और इन सिटीज इन जनरल इन इंडिया, young people are more confident, and certainly women, girls are more confident than before. And once they have economic independence, you know, they, I don't think you can apply the same old rules of tradition to on them. And I have two daughters, you know, and I see how they're very, they can become rebellious very quickly. And I think as a culture, we should be able to understand and absorb that, absorb this and negotiate and find some kind of peace with it. And in a micro way, the problems of losing identity happens even in Indian urban culture. I'll give you an example. I've heard this many times. When you hear a story about, say, Shivji, you know, what he does to Ganesh. And, you know, I believe that Indian children abroad, they get shocked by that. You know, how can he do that to the child? How can he cut off the head and all that? That is because you're deracinated. That means you're being pulled away from the original culture. In the original culture, you understand mythology. You understand that, you know, there are myths and there are metaphors. They're not literal things. And but in the West, it is not there. See, the West actually derives a lot from Greek civilization, where even there also gods get angry, they get jealous, they curse people, all that happens. But their religion is not that. In India, we have not, there is actually